0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस शो में जिसका नाम है
1: All is well, RJ Adnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन MGM 90.8 FM। तो मेरे सुकून की मुसाफिर हो, आज है फ्राइडे और फ्राइडे का मतलब है काम की गाड़ी स्लो मोशन में और दिल का म्यूजिक एकदम हाई मोशन में। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद आज का दिन थोड़ा मुस्कान लेकर आता है। डेडलाइन साइड में हो जाती है और मी टाइम हाई हो जाता है, क्योंकि ना शनिवार की जल्दी ना सोमवार का डर, बस एक सुकून का एहसास जिसे फ्राइडे कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि यार शुक्रवार वो खुशबू होती है जो कि पूरे हफ्ते भर की थकान की महक ले आती है। आज थोड़ा सा काम के बीच में चाय की चुस्की जरूर लेना और उन दोस्तों से बात जरूर करना जिनसे बात आप बस मीटिंग के वक्त करते हो। और हाँ, अपनी प्लेलिस्ट में आज वो एक गाना जरूर ऐड करना जिससे आपको सुकून मिलता हो। तो चलिए फिर इस सुकून वाले फ्राइडे को एंजॉय करते हैं और आपकी मॉर्निंग गुड करते हैं। आज का दिन जैसा भी हो गुजरने वाला है, याद रखिएगा और कीप मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मुस्कान की चमकान जब तक आपके चेहरे पर रहेगी तब तक आपका बॉस आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, समझे। सो बी सेफ, कीप मुस्कुराना एंड गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर। सुनते रहना MGM 90.8 FM। हैप्पी फ्राइडे।
1: ऑल इज वेल, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन MGM 90.8 FM।

सुका कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। तो आज के किस्सों का कारवा में हम सुनेंगे सुकुन नाम से एक छोटी सी कहानी। वो हर सुबह 7 बजे बस पकड़ती थी। एक हाथ में टिफिन था और आंखों में नींद थी। हर दिन भागती हुई लोगों की भीड़ में घुसती पर हमेशा टाइम पर पहुंचती। नाम था उसका अनवी। ना कोई शिकायत, ना कोई दिखावा, बस एक सीधी सादी लड़की जो हर दिन ऑफिस जाती, वापस लौटती और फिर वही दिन दोहराती। एक दिन बस में उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी। कहने लगी, बेटी तू हर रोज इसी तरह भागती है, सुकून नहीं मिलता क्या? अनवी ने हंस कर कहा, अम्मा सुकून तो बहुत है पर टाइम नहीं है उसे महसूस करने का। अम्मा ने मुस्कुरा कर अपना टिफिन खोला और एक गर्मा गर्म पराठा उसकी तरफ बढ़ाया। खा ले बेटी, ये सुकून है, टाइम नहीं लेना पड़ता, बस बांटना पड़ता है। उस दिन पहली बार अनवी ने ऑफिस जाने की जल्दी नहीं की। पराठे खाए, अम्मा से बातें की और पहली बार जाना सुकून दौड़ में नहीं रुकने में मिलता है। कभी कभी किसी अजनबी से मिलने वाला एक पराठा हमें जिंदगी का सबसे प्यारा सबक दे जाता है। सुकून ना किसी होटल में मिलता है, ना छुट्टी लेकर, वो तो बस किसी छोटे से लम्हे में छुपा होता है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आ गई होगी। सो कैसी लगी जरूर बताना। व्हाट्सएप करना 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर एंड सुनते रहना।

Let's talk about healthy life. You are listening to MGM 90.8 FM. All is And सुबह उठते ही ना तो हम सबका पहला प्यार क्या होता है पता है? मोबाइल फोन. सुबह उठते हम सबसे पहले चेक करते किसी का नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज आया, बरोबर ना? लेकिन अगर एक छोटी सी हैबिट चेंज करना है तो हेल्थ को बहुत फायदा हो सकता है इससे. और वो हैबिट है सुबह खाली पेट एक ग्लास पानी पीना. इसका फायदा भी बहुत सिंपल है और बहुत खास है. बॉडी हाइड्रेट होती है, डाइजेशन बेटर होता है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव हो जाता है. मतलब बॉडी को एक नेचुरल गुड मॉर्निंग मिल ही जाता है. बहुत लोग ना बोलते हैं कि मॉर्निंग में टायर्ड फील होता है यार, कभी रीजन सिर्फ डिहाइड्रेशन भी होता है. और हाँ, सुबह पानी पीने से स्किन फ्रेश फील करती है और बॉडी के टॉक्सिंस को फ्लश आउट करने में भी मदद होती है. तो कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करो. अलार्म बजे मोबाइल साइड में रखो और एक ग्लास पानी से दिन की शुरुआत करो. छोटी आदत लेकिन हेल्थ के लिए बड़ा फायदा, समझे? स्टे ट्यून.

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करतगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैम, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए डेली स्ट्रेस मैनेज करने के सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स क्या है?
1: देखिए, पहली बात है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ कि पहले हमारे मेजर 3 टास्क जो है हमको वो प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले हमें वो खत्म करना है। हमें उन 3 चीजों पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मान लीजिए कि 3 चीजें मेरी काफी इम्पोर्टेंट है जिनमें से एक चीज नहीं हुई है, तो वो क्या होता है कि मेंटली एक बर्डन फील होता है हमको, और उस बर्डन की वजह से दूसरी चीजों में भी मन नहीं लगता, दूसरे काम भी ठीक से नहीं होते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे मोबाइल में कोई एक ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला या ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला ऐप अगर बैकग्राउंड में चल रहा हो तो हमारा मोबाइल का फंक्शन कैसे कम हो जाता है। सो सिमिलरली हमको वैसे मेजर रोज, दिस शुड बी अ डेली एक्सरसाइज कि ऑफिस में बैठ के पहले 3 प्रायोरिटाइज करें काम और वो पहले खत्म करें। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर 1.5 घंटे बाद अगर हम 5 मिनट का ब्रेक लें, कि जैसे एक ग्लास पानी पी लिया, 50 कदम हमने वॉक कर लिया ऑफिस में, है ना, विदाउट मोबाइल, तो थोड़ा 5 मिनट वॉकिंग और थोड़ा पानी पीना इज बेटर, तो वो हमको फिर से फ्रेश बना देता है एंड देन अगेन वी आर रेडी टू कॉन्सेंट्रेट फॉर से नेक्स्ट 90 मिनट्स। तो ये 2 चीज़ें तो मैं खुद भी काफ़ी इम्प्लीमेंट करती हूँ और मेरा तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मैंने महसूस किया है, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं।
0: So, आप अपना स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करते हो तो ये टिप्स आप यूज कीजिएगा और फायदा तो आपको होगा ही। So, याद रखिए ये टिप्स, और भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और सुनते रहिए
2: कहीं

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर। आरजे अदनान आपके साथ है आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए। और आज गाने की फरमाइश आई है धनंजय देशमुख की तरफ से इस गाने के लिए। क्या बात यार, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है सर ने। तो फिर आप धनंजय जी की फरमाइश हम पूरी करते हैं। आणि हो जर तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर व्हाट्सअप करा 9359320080 पर। तुमची फरमाइश सांगा, आम्ही ती पूर्ण करणार। आणि ऐकत रहा MGM 90.8 FM।

G20 पेट्रोल के बारे में तो हम सभी ने सुना ही, और इसकी चर्चा आजकल बहुत जगहों पर शुरू है। आरजी अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM, और आप जो अपने गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, फिलहाल तो वो इथेनॉल वाला यानी कि E20 वाला ही पेट्रोल मिल रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ना तो दिन में तकरीबन एक गैरेज में 10 में से 4 ऐसे गाड़ियां आती है रिपेयरिंग के लिए जो कि E20 पेट्रोल की वजह से खराब हो रही है। और E20 पेट्रोल भाई आजकल की गाड़ियों में ना तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं हो रहा है, एंड इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है। ये अपने मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ एक रिपोर्ट में है, वही मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, वरना आप कहोगे कि यार ये अदनान दिल से कुछ भी कहता है। गाड़ियाँ बंद गिरना ये एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, एंड माइलेज गाड़ियों का एकदम कम हो जाना ये भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और आपने ना तो एक बात नोटिस की होगी, पेट्रोल पंप के ऊपर एक नोटिस लगाई होती है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जरी थोड्याशा पाण्याच्या संपर्कात आले तरी इथेनॉलच्या रासायनिक गुणधर्मामुळे सर्व इथेनॉलचे रूपांतर पाण्यामध्ये होते। म्हणजे सिंपल कसं आहे की अगर इथेनॉल वाला पेट्रोल थोड़े भी पानी के कॉन्टेक्ट में आया तो पूरी तरीके से पानी बन जाता है पेट्रोल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि गाड़ी की वॉशिंग करते वक्त थोड़ा भी पानी पेट्रोल टंकी में जाना नहीं चाहिए, वरना फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, वो पूरा के पूरा फ्यूल फिल्टर करना पड़ता है, यानी कि पूरा फ्यूल टैंक बाहर निकाल के उसको क्लीन करना पड़ता है। और ऐसा कुछ दिन पहले मेरे गाड़ी के साथ भी हुआ था, बेचारी टू व्हीलर चल रही थी बहुत अच्छे से, अंदर पेट्रोल मैंने डाल दिया और बरसात का थोड़ा सा पानी अंदर चला गया, तो देखा तो क्या वो पेट्रोल पूरा पानी बन चुका था। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि यार E20 पेट्रोल बेस्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, ये सब कुछ फेक है, बट ग्राउंड जीरो पर रियलिटी कुछ और ही है। आम आदमी ना तो इस पेट्रोल की वजह से बहुत परेशान हो रहा है। बस इतना है कि आम आदमी पीसता है, पीसने दो, चलता है चलने दो, बल्कि बस चलता ही आ रहा है। खैर, स्टे ट्यून्ड।

0: हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले है, ये बात तो सच है यार। खैर क्या ही रखा है गोरेपन में और कालेपन में। You are listening MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और कभी कभी आपने भी ना तो किसी क्रीम की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वो कहते हैं कि सिर्फ 7 दिन में गोरा निखार, इंस्टेंट ग्लो, फेयरनेस गारंटेड। और शायद एक पल के लिए सच भी होगा ऐसा। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ऐसा हम भी मान लेते हैं। नो व्हाट क्या है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन लोग उसी चमकती चीज को सोना समझते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला है कि मार्केट में मिलने वाली कुछ फेयरनेस क्रीम है जिसमें मर्क्यूरी यानी के पारा जिसे कहते हो वो बहुत ही खतरनाक होता है, और वो उन ब्यूटी क्रीम के अंदर डाला जाता है। ये सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं बल्कि किडनी और पूरे अपने हेल्थ को भी खराब कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। सोचिए सिर्फ कुछ दिनों की फेयरनेस के लिए अगर हम अपनी सेहत को रिस्क में डाल दें तो ये सही बात है या गलत बात है। हम अक्सर इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, इस पर जो इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनको देखकर ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, लेकिन कैमरा फिल्टर और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो याद रखिए, हेल्दी स्किन इज मोर ब्यूटीफुल देन फेयर स्किन। वैसे क्या है ना, असली खूबसूरती आपके रंग में नहीं, आपकी मुस्कान, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेहत में होती है। जिस तरीके से अभी आप मुस्कुरा रहे हो ना, आय हाय क्या बात है, कितने खूबसूरत आप नजर आ रहे हो। बेसिक सी चीज नोटिस कीजिए, अगर आपने मुस्कान के साथ आपकी फोटो क्लिक करी ना, आपकी खूबसूरती अपने आप बढ़ती है। और ये काले गोरे में क्या रखा है भाई, तो इसलिए प्लीज ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट मत यूज कीजिएगा। और हाँ, जमाना तो हमें जज करता ही है, करने दीजिए, जमाने का काम ही है। बट वो गाना हमेशा याद रखिए,
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: कलर चाहे कुछ भी हो, अपना काम बताता है, अपनी जुबान बताती है तुम कितने खूबसूरत हो, और अपनी स्माइल बताती है तुम कितने हसीन हो। समझे, स्टे ट्यून्ड।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

स्टिंग लवर्स इन द हाउस, कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टिंग के शौकीन है, और स्टिंग का मार्केट इतना है भाई कि जब नया नया लॉन्च हुआ था ना, तो हर किसी के हाथ में स्टिंग ही नजर आ रहा था, और स्टिंग के अंदर कैफीन बहुत भर भर कर होता है, इस वजह से लोग उसको ज्यादा पी रहे थे, और बाकी कोल्ड ड्रिंक का भी मार्केट डाउन हो गया था। लेकिन जितना कैफीन ज्यादा उतनी हेल्थ हमारी खराब, और स्पेशली जो स्टिंग ड्रिंक है ना बच्चों के अंदर बहुत पॉपुलर थी, और फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट सामने आ गए, बच्चों की हेल्थ खराब होती हुई नजर आ रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक फैसला लिया है कि स्कूल के आसपास 500 मीटर तक अगर कोई दुकानदार स्टिंग बेचता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और उसकी दुकान सील हो सकती है, बिकॉज इससे बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके घर पर कोई बच्चा होता है 5-6 साल का, या तो 5 से 15 साल तक के बच्चे की उम्र होती है, और वो स्टिंग मांगता है, और हम उसे स्टिंग लाकर भी देते हैं और कहते हैं यार ये बहुत अच्छे से पीता है, इसको बहुत पसंद है। जिस तरीके से आप उसको पिला रहे हो ना, उसी तरीके से आप भी अपने बच्चों की हेल्थ खराब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें अपने पेरेंट्स की भी गलती है जो कि उनके बच्चों ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करती है, पिलाती है। और स्टिंग का ब्लैक मार्केट भी चल रहा है, बहुत सारे जगह पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि दुकानदार बच्चों के हाथ में स्टिंग देते और कहते हैं कि यहाँ पर मत पीना, कहीं दूर जाकर पीना। कोई एकदम चुपके से 10 वाली 20 वाली स्टिंग 25 को देता है और उसका ब्लैक मार्केट करता है, तो अब इन सभी पर कार्रवाई हो सकती है। और अब FDA ने खुद कहा है कि अगर स्कूल के एरिया में कोई दुकानदार स्टिंग बेचता होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। तो प्लीज बच्चा कंपनी हो या बड़े लोग भी हो, स्टिंग अवॉइड ही कीजिए। स्टिंग क्या, जिस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन बहुत ज्यादा होता है वो सभी कोल्ड ड्रिंक हानिकारक होते हैं, क्योंकि एक 20 रुपए वाली स्टिंग के चक्कर में कब आपका 20,000 का बिल फट जाए अस्पताल का पता ही नहीं चलता। तो बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी, इस वेब सीरीज के बारे में सुना है ना आपने, या देखी तो होगी आपने। ट्रेंडिंग वन पर चल रही थी अमेजॉन प्राइम पर, और हिट तो रही स्टोरी, बहुत अच्छी है, क्योंकि जो टाइटन वॉच है ना, तो उसके बनने की एक कहानी है। टाटा ग्रुप ने किस तरीके से इसको मार्केट में लाया था। एक और सीरीज अब आने वाली है टाटास पर ही, इस सीरीज का नाम ही रहेगा द टाटास, जिसके अंदर अब तक की टाटा इंडस्ट्री की और उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, किस तरीके से टाटा ने बिजनेस में शुरुआत की थी और कहां से कहां तक वो पहुंच गए थे, और क्या कुछ उनकी फैमिली के अंदर की बातें थी, और भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी इस वेब सीरीज के जरिए, जिसका भी काम शुरू हो चुका है। और ये वेब सीरीज बन रही है गिरीश कुबेर इनकी जो बुक है द टाटास, हाउस फैमिली बिल्ट बिजनेस एंड नेशन, तो इस बुक के जरिए सीरीज बनने वाली है। तो अब ये कब तक बनकर तैयार होगी, क्या होगी, ये अब तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट तो कर दी गई है। बट मानना पड़ेगा जिस तरीके से टाटा ग्रुप ने अपने इंडिया को डेवलप किया है, काबिले तारीफ है, और उनकी हिस्ट्री जानना भी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से टाइटन स्टोरी में बहुत सारी चीजें पता चली कि टाइटन की कहानी क्या है, उस तरीके से अब टाटास की कहानी और उनके बिजनेस की कहानी सामने आएगी। वैसे आपने देखी है क्या द टाइटन स्टोरी? बताइए जरा कैसी लगी आपको ये सीरीज। DM on Insta RJ Adnan and stay tuned.

0: आई थिंक ये मूवी मेकर्स ना तो उनका जो पोस्टर है आजकल बड़े सुस्त तरीके से बना रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं एक मूवी के पोस्टर पर। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। राजकुमार राव की अगली मूवी आने वाली है सौरव गांगुली की लाइफ के ऊपर बेस है मूवी द सौरव गांगुली स्टोरी दादा, और इसका पोस्टर रिलीज किया है सौरव गांगुली जी के जन्मदिन पर। सोशल मीडिया पर इसका पोस्टर डाला था राजकुमार राव ने, और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद ये पोस्टर पर लाइक्स तो कम आ गए लेकिन कमेंट्स इतने ढेर सारे आ रहे हैं कि सारे कमेंट्स नेगेटिव नजर आ रहे हैं। बिकॉज पोस्टर इतना क्रिएटिव बना है कि लगता ही नहीं कि किसी मूवी का पोस्टर होगा, ये लगता है कि मैंने मेरे हाथ से सिंपल तरीके से कैनवा में या तो फिर पिक्सआर्ट में पोस्टर बनाया है। आप भी अगर ये मूवी का पोस्टर देखोगे ना आपको लगेगा भाई क्रिएटिविटी कहां पर गई है, ChatGPT तो इससे बेटर पोस्टर बनाकर देगा ही मूवी का। और साफ साफ नजर आ रहा है कि पोस्टर पूरा फेक बनाया है और एडिट किया है। पोस्टर देखने के बाद आप कमेंट्स पढ़िएगा तब मजा आएगा आपको कि लोग क्या कह रहे हैं। बाय द वे आपने देखा है क्या पोस्टर? नहीं देखा होगा तो राजकुमार राव के इंस्टा आईडी पर है, जाकर देखिए तब आपको समझेगा कि ऐसा क्यों बनाया होगा ये पोस्टर। खैर ये मूवी रिलीज होने वाली है जो कि सौरव गांगुली की लाइफ पर बेस है 14 मई 2027 को थिएटर में। और हाँ एक बात बताइएगा कि सौरव गांगुली के रोल के लिए राजकुमार राव कास्टिंग आपको सही लगती है या नहीं, DM करके बताइएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस N6 सिडको छत्रपती संभाजीनगर।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। कांतारा का ये गाना मेल सिंगर ने गाया है या फीमेल सिंगर ने?
1: कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है।
0: सुनकर लगता है कि ये किसी फीमेल सिंगर की वॉइस होगी, लेकिन नहीं, ये एक मेल सिंगर की वेंकटेश डीसी। उनकी नेचुरल वॉइस हाई पिच है और उस पिच में गाना वो कंफर्टेबल समझते हैं, लेकिन इस गाने में थोड़ा चेंज है और साथ ही साथ उनकी टोन बहुत सॉफ्ट है और इस गाने में उन्होंने यूज की है हेड वॉइस और मिक्स वॉइस, इसी वजह से उनकी आवाज पतली, हल्की और फीमेल जैसी साउंड करती है। तो ये कन्फ्यूजन सिंगर के वजह से नहीं बल्कि सिंगर की यूनिक वोकल रेंज, सिंगिंग टेक्निक और म्यूजिक प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
2: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
0: पतविक्रेता बंधू भगिनींच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर शहर पतविक्रेता समिती सदस्य निवडणूक 2026
3: आणि मतदान दिनांक 25 जुलै सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत. सदरील निवडणुकीत केवळ नोंदणीकृत पतविक्रेत्यांनाच मतदान करता येईल.
0: नोंदणीकृत पतविक्रेते एकूण 6 पैकी कुठल्याही एका मतदान केंद्रावर मतदान करू शकता. मनपा शाळा बडकल गेट, मनपा शाळा किराडपुरा, मनपा शाळा सिडको N7, मनपा शाळा मुकुंदवाडी, प्रियदर्शनी मनपा शाळा, शहानूर मिया दर्गा आणि मनपा शाळा एकनाथ नगर उस्मानपुरा.
3: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका तर्फे जनहितार्थ प्रसारित.
4: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
5: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
4: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
0: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017088546. MGM यूनिवर्सिटी, NC3 को, छत्रपति संभाजीनगर.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम।
1: साथ है तो बात है।

0: Cook and Bake with Rajashree Agrawal, only on MTM 90.8 FM. साथ है तो बात है.
1: हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजश्री अग्रवाल. आज का जो हमारा शो है कुक एंड बेक विद श्री कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस, इसमें आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ. हमारा जो शो है इसमें मैं आपको कई तरह की रेसिपीज बताने वाली हूँ कि जिसमें आपको डेली जब आप कुक करते हो या बच्चों के टिफिन बनाते हो, डेली भी कुकिंग में आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से काम आ सके और आप उसको बनाकर देख सको. तो ऐसी रेसिपीज जो है वो हम लेने वाले हैं इस शो में. तो आज जो हम बात करने वाले हैं ऐसी समस्या की जिससे लगभग हर माँ आज परेशान है कि बच्चों के टिफिन में रोज क्या देना है. मतलब माँ का दिल ऐसे होता है ना कि उन्हें लगता है कि जब हम बच्चों को टिफिन देते हैं तो वो कुछ अलग भी हो, साथ में स्वादिष्ट भी रहे और हेल्दी भी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चा जो भी माँ ने दिया है वो पूरी तरह से टिफिन जो है वो खत्म कर ही घर लौटे. तो इस तरह से माँ जो है वो परेशान होती है और फिर रोज नई नई आइडियाज अपनी लगाती है कि कल मैं टिफिन में क्या देने वाली हूँ. इसके लिए कई सारे प्रिपरेशन भी करके रखती है पहले दिन से बच्चों के लिए, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है. तो आज मैं आपको ऐसी ही एक रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है. मतलब ऐसे होता है ना कि आजकल आप मार्केट में देखते हो हर जगह पे रोल्स और रैप्स के शॉप्स है, इसीलिए कि लोग उसे पसंद करते हैं, बच्चे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे आप काठी रोल्स बोलते हो. तो मार्केट में आप जितने भी रोल्स खाते हो ये ज्यादा तो मैदे से बने हुए होते हैं. मतलब ऐसे है कि जो आपके बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो बच्चे ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद आता है. तो श्री कुकिंग और बेकिंग क्लास में मैं ऐसी ही रेसिपीज बताती हूँ कि जो आपके हेल्थ के हिसाब से भी अच्छी हो. तो उसी हिसाब से ये जो काठी रोल्स की रेसिपी है ये मैंने अपने आप से डिजाइन की हुई है. तो इसमें क्या होता है ना, जो मैदे का रोल होता है वो हम मैदे से न बनाते हुए आप इसमें वेरिएशन ला सकते हो. तो पहली जो रेसिपी बता रही हूँ मैं, उससे आपको गेहूं के आटे से रोटी बनानी है. ठीक है, जैसे आप डेली चपाती बनाते हो बस उसी तरीके से आपको चपाती जो है वो बना के रख देनी है. इसके बाद में काठी रोल्स होता क्या है, एक्चुअल में काठी रोल जो है वो अपने आप में ही, मतलब सिंपल बचपन में जब हमें मम्मा ये देती थी, एक रोटी रहती थी चपाती और उसके अंदर आप आलू की सब्जी भरकर रोल कर खा देते, बस वही कंसेप्ट है, उसी को ही काठी रोल्स में यूज किया हुआ है. तो ऐसे होता है ना, काठी रोल्स मतलब एक ऐसी डिश जिसमें रोटी पराठे के अंदर एक स्वादिष्ट और अच्छा सा स्टफिंग भरकर उसे रोल किया जाता है. तो ये स्ट्रीट फूड में कई ज्यादा जगहों पे बहुत फेमस है. तो हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो है आपको एक गेहूं की चपाती बना लेनी है, जितने रोल्स बनाने हैं उतनी चपाती आपने बना लेनी है. तो आटा कैसे लगाओगे आप, गेहूं का आटा लेना है आपको एक कप. आपके पास अगर घर में कोई कटोरी हो तो वो भी आप ले सकते हो, उससे आपको लेना है. इसमें आप दो से तीन चपाती जो है वो आसानी से बन जाएगी एक बच्चे के लिए. उसके बाद में आपको उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, एक छोटी चम्मच. ठीक है, और इसे हल्के गुनगुने पानी से आपको भिगो देना है. भिगो कर आपको एक 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद में आपको इसकी चपाती जो है वो रोल कर लेनी है. उसके बाद में आप एक तवा हीट करोगे और उसको आपको दोनों ओर से अच्छे से सेक लेना है. आप इसे घी भी लगा सकते हो या तो आप इसे तेल में भी कर सकते हो. थोड़ा सा बच्चों के लिए और टेस्टी बनाना है तो सॉल्टेड बटर भी आप यूज कर सकते हो. इस तरह से चपाती जो है वो बनाकर आपको रेडी कर लेनी है. उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर का जो स्टफिंग होता है तो वो बनाना है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले प्रिपरेशन होगा. जैसे अभी जो आप हमने एक कप का आटा लिया है उस हिसाब से आपको जितना मेजरमेंट लगेगा स्टफिंग के लिए उतना आपको बता रही हूँ. एक आपको ले लेना है प्याज, जिसे आपको लंबाई में कट कर लेना है. जैसे हम भजिया में कट करते हैं ना, बस सेम वैसे ही लंबाई में आपको एक प्याज जो है वो कट कर लेना है. इसके बाद में आपको एक शिमला मिर्च लेना है और उसको भी आपको लंबाई में कट कर लेना है. एक टोमेटो लोगे, उसे भी आपको लंबाई में कट कर लेना है. पनीर लेना है, मार्केट में जो पनीर आता है वो भी यूज किया तो भी चलेगा, घर पर आप अगर पनीर बनाते हो वो भी लिया तो भी चलेगा. पनीर को आपको क्रम्बल कर लेना है, मतलब हाथ से ही ऐसे जैसे हम उसका चूरमा बनाते हैं ना उस तरह से. तो पनीर को आपको ग्रेट कर लेना है तो ग्रेट कर लीजिए या तो फिर आप उसको क्रम्बल कर लीजिए. उसके बाद में आपको ये प्रिपरेशन जब रेडी हो जाता है तो एक पैन को आपको हीट करने के लिए रख देना है। पैन जैसे ही हीट हो जाएगा हल्का सा ऑयल डालोगे, 1 से 2 टीस्पून आपको ऑयल डालना है। उसके बाद में हमने जो प्याज कट कर रखा है ये आपको उसके अंदर डालना है और अच्छे से आपको इसे सौते करना है, तब तक जब तक कि ये अच्छे से पिंक ब्राउन ना हो जाए, है ना। डार्क ब्राउन नहीं करना है आपको, याद रहे आपको पिंक ब्राउन करना है, मतलब हल्का ही आपको सेक लेना है। जैसे ही हमारा प्याज जो है वो सिका जाता है, इसके बाद आपको इसके अंदर ऐड कर देना है शिमला मिर्च जो हमने लंबाई में कट कर रखी है। इसे भी आप अच्छे से सौते कर लोगे। याद रहे गैस की फ्लेम जो है ये सौते करते समय आपकी लो टू मीडियम पे रखना है, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं रखना है, ताकि चीजें जो है वो बर्न ना हो, है ना, जलना नहीं चाहिए। शिमला मिर्ची को आपको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है और एट द एंड आपको उसमें ऐड करना है टोमेटो जो भी हमने लंबाई में कट कर रखे थे, वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे। और टोमेटो को भी आपको 1 मिनट तक अच्छे से चलाना है, गैस की फ्लेम को आपको मीडियम पे ही रखना है। चलाने के बाद में आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच आपको लहसुन और अदरक का पेस्ट आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा ना, इसका फ्लेवर जो है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद में 30 सेकंड तक चलाओगे, क्योंकि लहसुन और अदरक जब डालते हो तो ये कढ़ाई में नीचे लगने लगता है, तो डालने के बाद में बस 30 सेकंड चलाइए। और फिर इसके बाद में जो पनीर हमने क्रम्बल कर रखा है वो आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। पनीर भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसमें। अब आपको इसके अंदर हल्के, जैसे बच्चे पसंद करते हैं ना, उस हिसाब से आपको मसाले डालने हैं। अभी मैं बोल रही हूँ आपको कि 1 चम्मच आपको डालना है लाल मिर्च, 1 चम्मच डालना है आपको गरम मसाला, या फिर आप घर का कोई मसाला हो वो भी डाल सकते हो, और आधी छोटी चम्मच डालना है आपको इसके अंदर हल्दी पाउडर। अभी ये एक क्वांटिटी मेजरमेंट हो गया जो इतने मटेरियल के लिए लगेगा आपको। अगर बच्चा बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाता है तो आप ये मेजरमेंट को कम भी कर सकते हो। जैसे हमने 1 बड़ी चम्मच जो है आपको बोला है कि लाल मिर्च पाउडर डालना है, तो आप इसको 1 चम्मच की जगह पे आधी चम्मच भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने बताया कि गरम मसाला है वो भी आपको 1 चम्मच डालना है, उसको भी आप 1 चम्मच की जगह पे आधी चम्मच कर सकते हो, और हल्दी पाउडर आपको 1/2 चम्मच ही डालना है। इसे अच्छे से मिक्स दे देना है और आपको एट द एंड इसके अंदर नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे निकाल लेना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दोगे। इसको अब आपको पूरी तरह से ठंडी करना है। देखो स्टफिंग जो है ये कभी भी आप गर्म नहीं भरोगे, क्योंकि गर्म अगर आप स्टफिंग डालते हो तो चपाती जो है ये गर्मी से फटने लगती है, है ना। तो इसके लिए स्टफिंग जब भी आपको यूज करना है चपाती के अंदर, तो मेक श्योर कि आपका स्टफिंग जो है ये एकदम से ठंडा हो। तो फैन के नीचे आपको इसे ठंडा कर लेना है, और इसके बाद में आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 से 2 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच दही। अभी कर्ड जो डालोगे ना आप इसमें, तो ये हंग कर्ड होना चाहिए जिसका पानी निकाला हुआ है, जिसे चक्का दही बोलते हैं, ओके। तो हंग कर्ड भी आपको ऐड कर देना है, कब, जब स्टफिंग पूरा ठंडा हो। गर्म जब स्टफिंग है तब आपको इसके अंदर दही डालना अवॉइड करना है, इससे आपका जो मिश्रण है वो फटाफटा सा दिखने लगेगा। तो मेक श्योर कि आपका स्टफिंग पूरी तरह से ठंडा हो जाए, और इसके बाद में ही आपको ये जो चीजें हैं हंकर्ड ये आपको ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स दे देना है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। तो चपाती हमारी रेडी है और जो स्टफिंग हमने बना रखा है वो भी हमारा रेडी है। अभी आपको इसके रोल्स बनाने हैं। रोल्स बनाने के लिए क्या करोगे, एक बर्तन लेना है आपको या थाली लेना है, उसमें आपको चपाती को खुला करके रखना है, ठीक है। फोल्ड नहीं होना चाहिए, खुली होना चाहिए चपाती पूरी। अब आपको इसके ऊपर लगाना है हरी चटनी। हरी चटनी आप पुदीने की भी बना सकते हो, हरी चटनी आप हरे धनिये की भी बना सकते हो, या दोनों को कंबाइन करके भी बना सकते हो। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत सी चीजें ऐसी लेती हूँ कि जो हेल्दी हो, है ना, क्लासेस में भी मैं यही बताती हूँ कि जो आपके हेल्थ के लिए हिसाब से अच्छे हो वही चीजों को आपने प्रायोरिटीज देना चाहिए। तो देखो पुदीना अच्छा होता है, उसके बाद में करी पत्ता हमने खाना चाहिए डेली, एंड हरा धनिया। तो तीनों को मिला के मैं आपको एक चटनी बताती हूँ जो आपको, जो हमने चपाती बनाई है उसके ऊपर स्प्रेड करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक मिक्सी का जार ले लेना है, पुदीना एक कप ले लो या एक कटोरी जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद में आपको ले लेना है हरा धनिया और करी पत्ते ले लेना है 15 से 20 आपको। ठीक है, हरा धनिया और पुदीना आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। इसे अच्छे से वॉश कर लो, 2-3 पानी से आपको धो लेना है और एक मिक्सी के जार में आपको इसे ले लेना है। अब आपको इसके अंदर क्या डालना है, आधा चम्मच डालना है आपको इसके अंदर जीरा पाउडर। ठीक है, जीरे को हल्का सा भून लिया और मिक्सी में से पीस लिया। ये जीरा पाउडर आपको इसके अंदर हाफ चम्मच ऐड करना है। उसके बाद में काला नमक और सादा नमक, जो रेगुलर सॉल्ट हम खाते हैं वो भी आधा चम्मच डालना है, और जो काला नमक आता है तो टेस्ट के लिए वो भी आपको इसके अंदर आधा चम्मच डालना है। अगर बच्चों के हिसाब से बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून आपको डालना है इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप 1 से 2 इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। बच्चों को हरी मिर्च थोड़ी सी तेज हो जाती है ना, बच्चे खाते नहीं है फिर वो चीज, तो बेटर है कि जब बच्चों के लिए बना रहे हो तो 1/4 चम्मच आपको डालना है सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर, या तो फिर अगर बच्चे खा रहे हैं तेज भी तो बेटर है कि जब बच्चों के लिए बना रहे हो तो 1/4 चम्मच आपको डालना है सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर, या तो फिर अगर बच्चे खा रहे हैं तेज भी तो आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में आपको इसको सभी चीजों को मिक्सी में से अच्छे से पीस लेना है, ओके, ग्राइंड कर लेना है। ये चटनी जो है एक बार ड्राई ऐसे पीस लिया आपने, अब आपको इसके अंदर जो भी पसंद है थोड़ा सा पानी डाल के इसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में पीस लिया आपने, पहले से ड्राई पीसोगे फिर थोड़ा सा पानी डालोगे फिर पीसना है आपको, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो प्रॉपर से मेंटेन रहे। और अब आपको खटाई के लिए, अगर आप दही पसंद करते हो तो दही डाल सकते हो, या तो नींबू पसंद करते हो तो नींबू भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। दोनों में से जो भी आप पसंद करते हो वो डालना है। फिर से एक बार मिक्सी में से अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी में आपको इसे पीस लेना है। अभी चटनी भी हमारी रेडी हो गई है, ओके। तो देखो, चपाती ली है हमने, उसको पूरा खुला किया, कहीं से भी फोल्ड नहीं है। अब ये जो ग्रीन चटनी हमने बनाई है ये आपको इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है अच्छे

से स्प्रेड करोगे आपको एक से डेढ़ टेबल स्पून या एक से डेढ़ टी स्पून भी आप डाल सकते हो. ओके, जैसे आप पसंद करते हो उतनी चटनी आपको स्प्रेड कर देनी है. अभी जो हमने स्टफिंग बनाई थी, कौन सी? प्याज वाली, टमाटर, शिमला मिर्च और पनीर डालकर. ओके, वेजिटेबल्स एंड पनीर की जो स्टफिंग बनाई है वो आपको इसका एक सिलेंड्रिकल रोल बना लेना है. ठीक है, कितना? चपाती से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और सिलेंड्रिकल रहना चाहिए. वो ऐसे लॉक जैसा दिखता है ना लकड़े का, वुडन का, तो लॉक जैसा आपको ये बना लेना है. और फिर आपको इसे अच्छे से चपाती को रोल कर लेना है. अगर आप पसंद करते हो तो, एक्चुअली हेल्दी बोल रहे हैं तो इसलिए मैंने नहीं बताया था, पर अगर आप पसंद करते हो तो आप इसके अंदर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो. कि इससे क्या होगा ना, इसका टेस्ट बढ़ेगा तो बच्चे बहुत आसानी से और पसंद से खाएंगे. तो इसके लिए आपको बताया कि अगर चाहते हो तो आप इसमें हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो. उसके बाद भी इसका रोल जो है ये बना लेना है. मेक श्योर कि आपका स्टफिंग जो है वो चपाती से बाहर ना आए, तो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करिए और फिर उसको रोल बनाइए, ताकि ऊपर और नीचे की साइड से स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए. इसके बाद में रोल जब हो जाता है तो टूथपिक लेना है आपको, और टूथपिक से हल्का सा इसको, जैसे हम सिलाई में कैसे करते ना, अटैच कर देते एक टाका डालकर, उसी तरह से टूथपिक में भी आपको इसे एक टाका डाल लेना है. कहाँ पे? चपाती में. ओके, तो अगर नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, ऐसा कि स्टफिंग बाहर ना निकले या तो फिर आपका रोल जो है वो खुले ना. इसके लिए सेफर साइड हमने टूथपिक लगाने के लिए बोला है, नहीं भी लगाते हो तब भी चलेगा. ठीक है, चपाती को आपने अच्छे से रोल कर लिया है. अब इस रोल को आप ऐसे ही खा सकते हो, या तो इसे और ज्यादा टेस्टी बनाना है तो आपको इसे क्या करना है ना, तवे पे आपको इसे फ्राई करना है, मतलब शैलो फ्राई करना है. ओके, तवा लिया, उसे अच्छे से हीट कर दिया आपने. ठीक है, तवा जैसे ही हीट हो जाता है हल्का सा उसके ऊपर बटर डालोगे या घी डालोगे, है ना. हेल्दी वर्जन में बना रहे हो तो घी का इस्तेमाल करो, जो प्योर घी होता है, देसी घी, वो आप डाल सकते हो एक चम्मच. ये जो रोल्स हमने बनाए हैं, सारे रोल आप ऐसे तैयार कर लो जैसे हमने फर्स्ट वाला रोल बनाया है. आपके दो बनेंगे, तीन बनेंगे, जितने भी बने हैं, और तवे पे बटर या घी डालकर आपको ये रोल्स रख देने हैं. इसके बाद में सभी ओर से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको सेक लेना है. मतलब रोटी कैसी क्रिस्पी हो जाती है ना, उस तरह से क्रिस्पी, थोड़ा सा ब्राउन शेड में आपकी जो चपाती है वैसे दिखना चाहिए. तो आपको इसे पूरे रोल को टर्न करते हुए एक साइड सेकी आपने, फिर रोल को हल्का सा टर्न कर दिया दूसरी साइड, ऐसे सब साइड से आपको रोल को जो है वो अच्छे से सेक लेना है और सेक कर निकाल लेना है. बीच में से आप इसे कट लगाओगे और आपको ऐसे ही इसको पूरी तरह से ठंडा करना है. और फिर आप क्या करोगे ना, इसे एक पेपर में रैप करना है. अभी बाहर मार्केट में जो होते हैं, सिल्वर फॉइल में भी रैप होते हैं, जो भी पेपर होता है उसमें आप कर सकते हो, सिल्वर फॉइल में कर सकते हो, फूड रैप रहता है उसमें कर सकते हो. मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप बटर पेपर में खींचिए. देखो, आप टिफिन में दे रहे हो, आपने रैप नहीं भी किया तब भी चलेगा, है ना. रोल को आप आसानी से पकड़ सकते हो. रैप अगर आप करोगे तो हो सकता है बच्चे के पेट में कहीं पेपर चला जाए, तो बेटर वे कि आपने रैप नहीं किया तो भी चलेगा. बट ऐसे होता है ना, बच्चों को ऐसे लगेगा कि रैप नहीं है तो ये काठी रोल्स है ही नहीं. तो इसके लिए आपको बताया कि अगर करना भी चाहते हो तो बटर पेपर का इस्तेमाल करिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के हिसाब से. और बच्चे को याद से बताना कि पेपर निकाल कर ही आपको इसे खाना है. तो इस तरह से जो काठी रोल्स की रेसिपी है हेल्दी वर्जन में, ये हमारी बन गई है. अभी एक काठी रोल की रेसिपी मैंने आपको बताई है. ओके, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मार्केट में जो मिलता है पूरा जो है वो मैदे, मतलब रिफाइंड मैदा जो होता है ना, तो उससे बना हुआ होता है. अभी आपको 7 days के 7 rolls जो है ये आप बच्चों को दे सकते हो. किस तरह से? सिंपली आपको करना क्या है, जो हमने गेहूं की चपाती बनाई है, बस आपको गेहूं की जगह पे रागी की रोटी बनानी है. आपने गेहूं की आटे की जगह पे रागी का इस्तेमाल किया और सारी प्रोसीजर जो है वो सेम आपने काठी रोल्स जो हमने गेहूं के बनाए ना शुरुआत में, बस वैसे ही आपको बनाना है. तो आप क्या कर सकते हो ना, चपाती में वेरिएशन ला सकते हो. एक दिन आपने बना ली रागी की रोटी,
एक दिन बना ली आपने मल्टीग्रेन आटे से रोटी, मल्टीग्रेन आटा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी घर पे खुद पिसवाइए, ओके, और उस आटे की रोटी बनाकर भी आप इसे चपाती बना सकते हो। उसके बाद में जो मिलेट्स होते हैं तो मिलेट्स को भी पीस कर लाइए, उसकी भी चपाती आप बना सकते हो। अलग अलग तरह के मिलेट्स है, 5-6 तरह के मिलेट्स आप लेके आ जाओ, उसकी भी चपाती आप बना सकते हो। तो ऐसे 7 days की वेरिएशन जो है ये आप चपाती में ला सकते हो। मतलब एक ही एक चीज खा के बच्चे बोर हो जाते हैं ना, तो आपको क्या होगा ना इससे वेरिएशन अगर आप करोगे तो बच्चे को भी लगेगा कि आप टिफिन में डेली उन्हें कुछ अलग दे रहे हो। तो गेहूं की चपाती होगी, रागी की चपाती होगी, मल्टीग्रेन आटे की चपाती होगी, अलग अलग मिलेट्स है उसकी चपाती होगी, ये हो गया वेरिएशन हमारा चपातीज में, ठीक है। अभी बच्चों ने, जैसे बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं तो इनको डेली बेसिस पे प्रोटीन लगता है, ओके, तो पहले तो हमने यूज कर लिया पनीर, ठीक है। अभी इसको सब्स्टिट्यूट हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, पनीर तो एक हो गया। अभी इसके अलावा आप किस किस चीज के रोल्स बना सकते हो? देखो, पनीर की जगह पे सेम चीज आप सोया चंक्स डालोगे, सोया वड़ी जो होती है वो आपको यूज करना है। बस आपको करना क्या है कि सोया चंक्स को भिगो के रख दो, उसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है आपको, उसको उबाल कर सॉफ्ट जैसे ही हो जाते हैं तो पनीर की जगह पे जब हमने स्टफिंग बनाया है ना, देखो वेजिटेबल्स जो है वही रहेगी, है ना, प्याज रहेगा, शिमला मिर्च रहेगी, टोमेटो रहेगा, लेकिन जब हम पनीर डाल रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको डालना है ये सोया चंक्स, ठीक है, क्रश करके इसको आपको उबाल लेना है। पहले तो पानी में भिगो के रखोगे, फिर उबाल लोगे और फिर इसे भी आपको क्रम्बल कर लेना है। और फिर ये सोया चंक्स जितना हमने पनीर डाला था, जैसे आपने 100 ग्राम से 150 ग्राम आपने पनीर लिया है, ओके, 200 ग्राम भी डाल सकते हो अगर आप ज्यादा प्रोटीन देना चाहते हो, तो उतनी ही मात्रा में 100 से 150 ग्राम आपको ले लेना है सोया चंक्स, ठीक है। तो इतने आप इसके अंदर डालोगे और बस वही सेम पूरी प्रोसीजर रहेगी, है ना। पहले हमने वेजिटेबल सौदे कर लिए, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, पनीर की जगह पे हमने सोया चंक्स क्रम्बल करके डाल दिए, और फिर बाद में मसाले डालकर, नमक डालकर पूरा हमने स्टफिंग जो है वो रेडी कर लिया। उसके बाद में उसमें दही ऐड कर दिया ठंडा करके, और फिर सेम हमने चपाती में ये भरा, इसका रोल बनाया, और फिर से आपको इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इस रोल को सेक लेना है बटर या घी डालकर, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अभी जैसे हमने चपातीज में वेरिएशन लिया, ऐसे सेम वेरिएशन आप इसके अंदर ले सकते हो। एक दिन आपने डाल दिया पनीर, दूसरे दिन डाल दिया आपने सोया चंक्स। अभी हरा मूंग, मूंग स्प्राउट्स जो होते हैं ना, हरे मूंग, तो वो भी बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। मूंग आते हैं हरे वाले मूंग, मार्केट से या कोई भी किराना शॉप पे आपको मिल जाते हैं, उसे आपको लेके आना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। धोने के बाद में आपको उसको 8 घंटे तक भिगो के रखना है, ओवरनाइट आप सोक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप उसको निकाल कर उसको अगर बांध सकते हो मलमल के कपड़े में तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, या तो किसी छन्नी पे निकाल कर उसे ढक कर भी मोड लाने के लिए आप छोड़ सकते हो। जैसे ही उसे मोड आ जाता है ना, तो उसके बाद में आप उसे यूज करोगे तो प्रोटीन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। अगर आपने भिगोए हुए हरे मूंग भी यूज किए तो भी चलेगा, मोड आए हुए मूंग यूज किए तो भी चलेगा, हरे वाले यूज किए तो भी चलेगा, जो रेगुलर वाले आते हैं वो भी यूज किए तो भी चलेगा, जो मटकी आती है ना, मोट बोलते हैं उसको, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मूंग बच्चा नहीं खा रहा है, तो आप और एक चीज कर सकते हो, जैसे हमने पनीर डाला तब आपको ये मूंग ऐड करने हैं, बस जब उसको मोड आ जाए उसके बाद हल्का सा उसे आपको पका लेना है, है ना, मतलब हल्का सा कुक कर लोगे, भाप पे पका लोगे आप उसे, कुकर में भी कर सकते हो, या तो अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में आप एक चलने पे वो रख दीजिए और उसे भाप पे 60-70% अच्छे से पका लीजिए, हल्का पका के खाओ तो जब डाइजेशन के लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मूंग अगर बच्चा नहीं खा रहा है ना स्प्राउट्स खाने के लिए, तो आप इसका पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हो। जैसे मूंग जो ये है हमने पका लिए, पहले हमने उसको मोड़ ला लिया, उसके बाद में हमने उसे कुक कर लिया है ना, कुक करके हमने उसे सॉफ्ट कर लिया, हल्का सा पका लिया ताकि वो सॉफ्ट हो गए, उसके बाद में आपने इसे मिक्सी में से पीस लेना है, ठीक है।
मिक्सी में से पीस लेने के बाद जब हम पनीर ऐड कर रहे हैं तो पनीर को हटाकर उसकी जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट आप मूंग स्प्राउट्स डाल सकते हो, है ना। पनीर हटाकर मूंग स्प्राउट्स डाल दिए, जैसे मैंने बोला कि पनीर का एक बना सकते हो आप, दूसरा हमने देखा कि सोया चंक्स का आप बना सकते हो, सेम उसी तरह से तीसरा जो है ये आप हरे मूंग का बना सकते हो। तो इस तरह से आप इसके अंदर वेरिएशन ला सकते हो। कभी आपने राजमा का भी, बच्चों को देखो राजमा अच्छा लगता है ना, तो राजमा का भी यूज आप कर सकते हो। राजमा कुक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको इसे 10 से 12 घंटे भिगो के रखना है, मार्केट से लेके आ जाओ।

इसका भी पेस्ट बना के भी आप यूज कर सकते हो। जैसे राजमा कुक हो गया, कुक करने के बाद में आपने इसे मिक्सी में से निकाल लिया और वो जो पेस्ट है वो आपने ऐड करी। कब? जब हम पनीर ऐड कर रहे हैं तो पनीर के जगह पे आपने राजमा डाला। अभी और एक चीज कर सकते हो, जब स्प्राउट्स डाल रहे हो है ना, तो थोड़ा सा टेस्ट जैसे जितना अच्छा पनीर का लगता है उतना ऑसम बट ऑब्वियस है ना इसका नहीं लगेगा, जो भी स्प्राउट्स है उसका, अंकुरित अनाज का। तो इसके लिए आप और एक आइडिया कर सकते हो बच्चों के लिए कि आपने करना क्या है, हाफ क्वांटिटी में आपने स्प्राउट्स का पेस्ट लेना है या स्प्राउट्स लेने हैं और आधा आपने पनीर डालना है। जैसे हमने बोला कि 100 से 150 ग्राम पनीर डालो, तो आपने 50 से 75 ग्राम ही पनीर डालना है और बाकी का 50 से 75 ग्राम आपने डालना है ये स्प्राउट्स या फिर जो भी राजमा आप डाल रहे हो, हरे मूंग आप डाल रहे हो, जो भी स्प्राउट्स आप। तो मतलब क्या होगा ना, टेस्ट उसका कम नहीं होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। इवन आप एक चीज कर सकते हो कि अगर आपको चीज भी डालना है तो अगर यूज करते हो तो स्प्राउट्स जब आप रोल बना रहे हो तो ऊपर से थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डाल दो, तो फिर उससे भी उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो ये कब करना है, जब स्प्राउट्स के बना रहे हो सिर्फ तब, जब पूरा पनीर का बना रहे हो तब आपको करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज कर सकते हो, दालें अपने थोड़ी सी, जैसे 100% कुक नहीं करना है और 80% भी कुक नहीं करना है, 50-60 मतलब दालें दिखनी चाहिए अखी, ऐसे पूरी दालें दिखनी चाहिए। तो ऐसे चना दाल की बना सकते हो, मसूर आता है अखा मसूर उसका भी आप बना सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा, भिगो लेना है, ओवरनाइट सोक कर लेना है, सुबह में भाप पे पका लेना है या कुकर में आपको पका लेना है और उसके बाद में आपको या तो वैसे ही यूज करना है या तो फिर मिक्सी में से उसका पेस्ट बनाकर आपको यूज करना है। अभी दूसरी चीज है, ये तो हमने डाली ही है ओके प्रोटीन के लिए, लेकिन अगर आपको फाइबर ज्यादा चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा चाहिए, ऐसे होता है ना कि बच्चे सारी चीजें नहीं खाते हैं तो वो विटामिन्स उनको नहीं मिलते हैं, वो फाइबर उन्हें नहीं मिलता है जो बच्चों के लिए हेल्दी है, उन्हें खाना चाहिए डेली बेसिस पे। तो आप और एक चीज कर सकते हो कि सब्जियां इसमें वेरिएशन ला सकते हो। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि आप इसमें सब्जियां कौन सी डालोगे, प्याज डालोगे, शिमला मिर्च डालोगे और टमाटर डालोगे। अभी आपके बच्चे जो भी हो गया बीन्स पसंद नहीं करते हैं है ना, तो आप बीन्स भी अगर रोल में पनीर के साथ डाल के देते हो तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है पनीर के साथ में। तो सेम चीज आप कर सकते हो, जब हम वेजिटेबल्स भून रहे हैं है ना, प्याज हमने भून लिया, टमाटर हमने भून लिया, शिमला मिर्च हमने भून ली, तब आप अलग अलग कलरफुल वेजिटेबल्स, देखो बच्चों को ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि कलरफुल डाइट देना चाहिए, मतलब जो रेनबो डाइट होता है ना, आपके टिफिन में डेली खाने में सभी तरह के रंग आना चाहिए, उसको बोलते हैं कलरफुल डाइट या रेनबो डाइट। तो इस तरह से आप वेजिटेबल्स का कर सकते हो, प्याज शिमला मिर्च और टमाटर की जगह पे वो तो डालना ही है, उसके साथ में जो भी बच्चे नहीं खाते हैं वो भी सारे वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना इसमें, हमारी जो रेसिपी हमने बनाई है कि इसमें तेल का बहुत कम यूज हुआ है। देखो तेल हमने सिर्फ एक चम्मच डाला, कब, जब हम वेजिटेबल सौते कर रहे हैं शुरुआत में, बाकी हमने कहीं पे भी तेल नहीं डाला। ये तो बच्चों ने डेली एक चम्मच तो खाना ही चाहिए। तो हम जो भून रहे हैं, मतलब जब रोल रेडी हो जाता है और हम उसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हेल्दी क्यों है ये, क्योंकि इसमें हमने तेल का कम इस्तेमाल किया है। अभी देखो रोल्स आप जब देते हो ना, तो ऐसे होता है ना कि बच्चे जैसे चपाती और रोटी खाना है, सॉरी रोटी और सब्जी खाना है, तो बच्चे आलस करते हैं या उनको वो खाना अलग अलग लगा के, एक ही रोल अगर आपने बच्चों को दे दिया तो बहुत मतलब उनके लिए तो अच्छा रहेगा ही और खाने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आसानी से बस हाथ में रोल पकड़ लिया और इजीली खा लिया। तो देखो बच्चों के टिफिन के लिए ना एक ही रोल में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। तो इसके लिए इसे हम हेल्दी भी बोलेंगे, बच्चों के लिए इजी भी बोलेंगे और बनाने के लिए भी आसान है। अभी कभी ऐसे होता है कि कभी आप बीमार हो या आप बना नहीं पा रहे हो सुबह उठ के, तो आप और एक चीज कर, देखो ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बच्चों को बासी खिलाओ, मैं टोटली इसके खिलाफ हूँ कि बासी आपने खिलाना चाहिए बच्चों को, बट ऐसी सिचुएशन आते हैं कि कभी हम बीमार है या हम बना नहीं पा रहे हैं सुबह उठ के, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो स्टफिंग है वो बना के रात में फ्रिज में रख देना हमेशा के लिए। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, आप बिल्कुल नहीं करोगे, एक आध बार जब आपकी इमरजेंसी है,

0: उस समय आपने क्या करना है, स्टफिंग जो है ये बना लेना है और ओवरनाइट आपने इसे फ्रिज में स्टोर कर देना है। तो सुबह बस आपने चपाती बनाई, फटाफट से रोल बनाया, स्टफिंग आपका रेडी है, तो आपका टाइम भी बचेगा और अगर आप बना नहीं पा रहे हो, हेल्थ इश्यूज है कुछ, तो उतने हेल्थ इश्यूज में या फिर जब आप कर नहीं पा रहे हो, फिर भी आप बच्चे को अच्छा और एक हेल्थी टिफिन दे पाओगे। ओके, क्योंकि बाहर जो मिलते हैं ना रोल्स, उसमें ज्यादा तो देखो मक्खन, मेयोनी, सॉस, इन सब का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जब भी मैंने अभी रेसिपी बताई तो आप लोगों ने देखा कि कहीं पे भी हमने कोई सॉस का इस्तेमाल नहीं किया है, ना हमने इसमें मेयोनीज डाला है। ओके, तो ये घर पर ही मतलब जो हेल्दी चीजें हैं, रोटी, ताजी सब्जियां, प्रोटीन, ये सब यूज करके हमने एक हेल्दी और बढ़िया सा एक बच्चों के लिए टिफिन रेसिपी बताया है। ओके, अभी देखो क्या होता है ना, बच्चे जंक फूड पसंद करते हैं। ओके, तो जंक फूड से क्या होता है ना कि बच्चों को डेली मतलब ऐसे लगता है कि मम्मा ने वो ही देना चाहिए टिफिन में, क्योंकि वो देखते हैं बाकी बच्चे भी ला रहे हैं, फिर हमारी मम्मा क्यों नहीं देती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, आप अगर ये दोगे तो ये 100% आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और अलग अलग रंग की सब्जियां दोगे तो इनको अलग अलग पोषक तत्व भी बच्चों को जो मिलेंगे। ओके, आपको और एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों को चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये टिफिन में कभी भी मत दीजिए आप, है ना। बहुत सारी हेल्दी चीजें हैं, बहुत सारे मौसमी फल है, सब्जियां है, इस्तेमाल करके आप अलग अलग रेसिपीज बनाइए। नहीं आप बना पा रहे हो तो शाम में बना के रखिए, रात में बना के रखिए, लेकिन हेल्दी ही बच्चों को खाना दीजिए। ओके, तो देखो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन था हेल्दी बच्चों के लिए टिफिन रेसिपीज का, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप रेसिपीज बनाइए और किस तरह से आपकी रेसिपीज बन रही है ये जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।
1: स्पेशल प्रोग्राम कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल अभी आपने सुना। आई होप कि इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चली होगी। सो और आप कौन कौन सी डिशेस एंड कौन कौन सा खाना बनाना चाहते हो या सीखना चाहते हो जरा बताइए हमें, डीएम कीजिएगा व्हाट्सएप पर 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर ठीक 1 बजे ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080545 46 MGM University, NC3, Chhatrapati Sambhajinagar।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, Institute, Kochi, Tirupati, Sambhajinagar.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
2: साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। यार कुछ लोग दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं, कुछ परिवार के साथ डिनर प्लान करते हैं, तो कुछ बस अपनी पसंदीदा सीरीज या फिल्म देखकर आराम करना चाहते हैं। शनिवार की शाम की सबसे अच्छी बात यही है कि घड़ी देखने की जल्दी नहीं होती, अगले दिन ऑफिस या स्कूल की टेंशन भी नहीं होती, इसलिए चाय का स्वाद भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और गाने भी दिल में थोड़ा ज़्यादा उतरते हैं। अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों के साथ या घर पर आराम से बैठे हैं, तो इस शाम को बस मुस्कुराते हुए बिताइए। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद खुद को थोड़ा वक्त देना भी ज़रूरी होता है, तो अपनी सारे टेंशन को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और इस खूबसूरत शनिवार की शाम का पूरा मज़ा लीजिए। हम हैं आपके साथ शानदार गाने और अच्छी बातों के साथ, क्योंकि वीकेंड का असली मज़ा तभी है जब आपकी शाम को खुशी और म्यूज़िक से हम भर ना दें। ऑफकोर्स यार, अगर आपके दिल के कोई करीब गाना हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टा हैंडल। मेरी इंस्टा आईडी है rjmanisha_, एंड ऑफकोर्स कहीं मत जाना क्योंकि गानों का सिलसिला तो अभी अभी शुरू हुआ है। इन द शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका लंच स्वादिष्ट भी हो और थोड़ा हेल्दी भी हो तो आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। अपने खाने में दही ज़रूर शामिल कीजिए। दही सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि पेट को ठंडक भी देता है। खासकर गर्मी और उमस वाले मौसम में दही खाना शरीर को हल्का और तरोताज़ा महसूस करा सकता है। अच्छी बात ये है कि दही को कई तरीकों से खाया जा सकता है। सादी दही, जीरा और काला नमक डालकर रायते के रूप में या फिर चावल के साथ, हर तरीके का अपना अलग मज़ा है। अगर आप दिन भर काम में बिजी रहते हैं और चाहते हैं कि लंच के बाद बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस ना हो तो दही एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बस ध्यान रखें कि अगर आपको दूध या दही से जुड़ी कोई एलर्जी या डॉक्टर की कोई खास सलाह हो तो उसी के अनुसार चले। तो आज जब लंच की प्लेट सजाए उसमें दाल, सब्जी और रोटी के साथ एक कटोरी दही के लिए भी जगह ज़रूर बनाइए विद कंसर्न ऑफ योर डॉक्टर। और अब इसी हेल्दी सोच के साथ बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की तरफ। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ हर पल है म्यूजिक, मुस्कान और अच्छी बातों का साथ। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी आपने गौर किया है, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, मूड भी बदल देती है। शायद बारिश हमसे कुछ कह रही होती है, शायद कह रही होती है कि जिंदगी कितनी भी तेज क्यों ना भाग रही हो, कभी कभी थोड़ा रुकना भी जरूरी है। बारिश की हर बूंद जैसे याद दिलाती है कि छोटी छोटी खुशियों की भी अपनी एक अलग कीमत होती है। खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्की लेना, मिट्टी की खुशबू महसूस करना या बस कुछ पल बिना किसी जल्दबाजी के आसमान को देखते रहना, यही पल तो बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती है। हो सकता है आज की ये बारिश आपको किसी अपने की याद दिला रही हो या फिर एक नई शुरुआत का एहसास करा रही हो, क्योंकि हर बारिश के बाद आसमान साफ होता है। और शायद ज़िंदगी भी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलों के बाद अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। तो अगर इस वक्त आपके शहर में बारिश हो रही है तो एक पल उसके साथ भी बिताइए, और अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हमारे गाने आपकी शाम को वही ठंडक और वही सुकून देने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं अगला शानदार गाना। बने रहिए आप इन द शो दिल से ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार की रात का अपना ही अलग मूड होता है। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद जब शनिवार की रात आती है तो ऐसा लगता है कि समय थोड़ा धीरे चलने लगा है। जल्दी सोने का मन भी नहीं करता। कोई दोस्तों के साथ बातें करता है, कोई अपनी पसंदीदा फिल्म देखता है, तो कोई बस देर रात तक गाने सुनते हुए अपने वीकेंड का मजा लेता है। शनिवार की रात हमें यही एहसास दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारी का नाम नहीं है। थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना और अपने लिए वक्त निकालना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भी इस वक्त जग रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं या घर पर आराम से बैठे हैं, तो इस खूबसूरत रात का भरपूर आनंद लीजिए। वीकेंड की यही तो खास बात होती है, कल सुबह अलार्म की चिंता नहीं होती और दिल थोड़ा ज़्यादा खुश होता है। तो इस शानदार शनिवार की रात को और भी यादगार बनाते हुए शानदार म्यूज़िक के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो वीकेंड की महफिल बस शुरू हुई है। इन द शो दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट एमजीएम कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वीकेंड आ गया है और अगर अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है तो एक छोटा सा आइडिया है, इस बार अपने फैमिली के साथ पिकनिक का प्लान बनाइए। ज़रूरी नहीं कि किसी बहुत दूर की जगह ही जाया जाए, आपके शहर का कोई पार्क, झील के किनारे की शांत जगह या कोई गार्डन भी एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बन सकता है। घर से थोड़ा सा खाना पैक कीजिए, बच्चों के लिए कुछ खेल रखिए, एक चादर साथ ले जाइए और सबसे ज़रूरी अपना मोबाइल थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि सबसे अच्छी यादें कैमरे से नहीं साथ बिताए हुए पलों से बनती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ खुलकर हंसना, बातें करना और बिना किसी जल्दबाजी के कुछ घंटे बिताना अपने आप में ही एक बड़ा सा जश्न है। तो इस वीकेंड काम की बातों को थोड़ा ब्रेक दीजिए और अपनों के साथ कुछ खूबसूरत पल जोड़िए। यकीन मानिए ऐसी छोटी छोटी आउटिंग ही बाद में सबसे प्यारी यादें बन जाती है। और अब इसी फैमिली वाली खूबसूरत फीलिंग के साथ सुनते हैं अगला शानदार गाना। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ हर पल है म्यूजिक, मुस्कान और अपनों के साथ बिताए जाने वाले खूबसूरत लम्हों के नाम। इन द शो दिल से ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वीकेंड सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का भी शानदार मौका है वीकेंड। सोचिए अगर इस वीकेंड आप सिर्फ एक घंटा भी अपनी किसी स्किल पर दे तो आने वाले दिनों में उसका कितना अच्छा फ़ायदा हो सकता है। चाहे नई भाषा सीखनी हो, कंप्यूटर की कोई नई चीज़ समझनी हो, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी हो या फिर कुकिंग, म्यूज़िक या फोटोग्राफी जैसी कोई हॉबी, हर छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर नया दिन कुछ नया सीखने का एक नया मौका लेकर आता है और वीकेंड का थोड़ा सा समय अगर खुद पर लगाए जाए तो आने वाला पूरा हफ्ता और भी बेहतर महसूस हो सकता है। तो इस बार वीकेंड में सिर्फ समय मत बिताइए, उसे अपने लिए निवेश कीजिए, अपने लिए यूज़ कीजिए। हो सकता है यही छोटी सी शुरुआत आपको किसी बड़े मौके तक पहुंचा दे। फिलहाल अपनी मुस्कान बनाए रखिए, म्यूज़िक का आनंद लीजिए, क्योंकि अच्छे गानों के साथ जब अच्छी सोच भी जुड़ जाए तो वीकेंड और भी शानदार बन जाता है। बने रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, ओनली ऑन एमजी 94.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा.
3: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ.
2: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान. समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688.
4: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
4: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
5: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
6: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
7: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के Department of Community Science में, जहां Diploma in Early Childhood Care and Education, BSc Honors Community Science with Research और also MSc Specialization in Food Nutrition and Dietetics, Extension Education and Communication Management, Human Development and Family Studies with National Education Policy and Research Oriented Education. Admission open for 2026-27. For more information, call on 7620322186 or 7017088546. MGM University, NCC, Chhatrapati Sambhajinagar.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वीकेंड का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है आराम, और आराम ज़रूरी भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्लानिंग भी साथ हो जाए तो पूरा वीकेंड और भी शानदार बन सकता है। बस 5-10 मिनट निकालिए और सोचिए कि अगले 2 दिन में क्या क्या करना है। परिवार के साथ समय बिताना है, दोस्तों से मिलना है, घर का कोई काम पूरा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है या फिर अपनी किसी हॉबी के लिए वक्त निकालना है। जब हमारा वीकेंड थोड़ा प्लान होकर चलता है तो समय भी अच्छे से इस्तेमाल होता है, और रविवार की रात ये अफसोस भी नहीं होता कि छुट्टी पता नहीं कब चली भी गई। याद रखिए, प्लानिंग का मतलब हर मिनट को बांध देना नहीं होता। थोड़ा समय आराम के लिए भी रखिए, थोड़ा अपने मन की चीज़ें के लिए भी रखिए, थोड़ा आने वाला हफ्ते की तैयारी भी कीजिए। इससे सोमवार भी पहले से ज़्यादा थोड़ा आसान लगने लगेगा। तो इस वीकेंड बिना किसी तनाव के बस एक छोटा सा प्लान बना लीजिए और हर पल का भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि अच्छी प्लानिंग अच्छे पलों को और भी यादगार बना देती है। चलिए अब इसी खूबसूरत वीकेंड के साथ सुनते हैं अगला शानदार गाना। बने रहिए आप हमारे साथ जहां हर पल म्यूजिक, मुस्कान और पॉजिटिव सोच के साथ होता है। इन द शो दिल से ओनली ऑन एमजे 94.8 FM। साथ है तो बात है।

देखते ही देखते शनिवार की एक खूबसूरत शाम अब विदा लेने लगी है। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए मुस्कुराहटों, आराम और अपनों के साथ बिताए कुछ खास पलों से भरा रहा होगा। किसी ने दोस्तों से मुलाकात की होगी, किसी ने परिवार के साथ वक्त बिताया होगा, तो किसी ने बस खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाला होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि वीकेंड अभी खत्म नहीं हुआ, रविवार अभी

0: ही आपका इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए अगर आज कुछ रह गया हो तो उसे कल के लिए संभाल कर रखिए। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी तनाव के, बस हर पल का आनंद लीजिए। ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक ही हमें नई एनर्जी देते हैं, इसीलिए आज की शाम को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अलविदा कहिए और कल की नई सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी यही दुआ है कि आपका रविवार भी खुशियों, सुकून और अच्छी यादों से भरा रहे। और हाँ, म्यूज़िक का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि अच्छे गाने हर दिन को और भी खूबसूरत बना देते हैं। फिलहाल शनिवार की इस शाम को कहते हैं गुड बाय, लेकिन हमारी मुलाकात और शानदार गानों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी, इस वेब सीरीज के बारे में सुना है ना आपने या देखी तो होगी आपने। ट्रेंडिंग वन पर चल रही थी अमेजॉन प्राइम पर और हिट तो रही स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो टाइटन वॉच है ना तो उसके बनने की एक कहानी है। टाटा ग्रुप ने किस तरीके से इसको मार्केट में लाया था। एक और सीरीज अब आने वाली है टाटास पर ही, इस सीरीज का नाम ही रहेगा द टाटास, जिसके अंदर अब तक की टाटा इंडस्ट्री की और उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, किस तरीके से टाटा ने बिजनेस में शुरुआत की थी और कहां से कहां तक वो पहुंच गए थे और क्या कुछ उनकी फैमिली के अंदर की बातें थी और भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी इस वेब सीरीज के जरिए, जिसका भी काम शुरू हो चुका है। और ये वेब सीरीज बन रही है गिरीश कुबेर इनकी जो बुक है द टाटास हाउस फैमिली बिल्ट बिजनेस एंड नेशन, तो इस बुक के जरिए सीरीज बनने वाली है। तो अब ये कब तक बनकर तैयार होगी, क्या होगी, ये अब तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट तो कर दी गई है। बट मानना पड़ेगा जिस तरीके से टाटा ग्रुप ने अपने इंडिया को डेवलप किया है काबिले तारीफ है और उनकी हिस्ट्री जानना भी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से टाइटन स्टोरी में बहुत सारी चीजें पता चली कि टाइटन की कहानी क्या है, उस तरीके से अब टाटास की कहानी और उनके बिजनेस की कहानी सामने आएगी। वैसे आपने देखी है क्या द टाइटन स्टोरी, बताइए जरा कैसी लगी आपको ये सीरीज। DM on Insta RJ Adnan and stay tuned.

आई थिंक ये मूवी मेकर्स ना तो उनका जो पोस्टर है आजकल बड़े सुस्त तरीके से बना रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं एक मूवी के पोस्टर पर। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। राजकुमार राव की अगली मूवी आने वाली है सौरव गांगुली की लाइफ के ऊपर बेस्ड ये मूवी, द सौरव गांगुली स्टोरी दादा। और इसका पोस्टर रिलीज किया है सौरव गांगुली जी के जन्मदिन पर, सोशल मीडिया पर इसका पोस्टर डाला था राजकुमार राव ने। और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद ये पोस्टर पर लाइक्स तो कम आ गए, लेकिन कमेंट्स इतने ढेर सारे आ रहे हैं कि सारे कमेंट्स नेगेटिव नजर आ रहे हैं। बिकॉज पोस्टर इतना क्रिएटिव बना है कि लगता ही नहीं कि किसी मूवी का पोस्टर होगा, ये लगता है कि मैंने मेरे हाथ से सिंपल तरीके से कैनवा में या तो फिर पिक्सआर्ट में पोस्टर बनाया है। आप भी अगर ये मूवी का पोस्टर देखोगे ना, आपको लगेगा भाई क्रिएटिविटी कहां पर गई है, ChatGPT तो इससे बेटर पोस्टर बनाकर देगा ही मूवी का। और साफ साफ नजर आ रहा है कि पोस्टर पूरा फेक बनाया है और एडिट किया है। पोस्टर देखने के बाद आप कमेंट्स पढ़िएगा तब मजा आएगा आपको कि लोग क्या कह रहे हैं। बाय द वे आपने देखा है क्या पोस्टर? नहीं देखा होगा तो राजकुमार राव के इंस्टा आईडी पर है, जाकर देखिए, तब आपको समझेगा कि ऐसा क्यों बनाया होगा ये पोस्टर। खैर ये मूवी रिलीज होने वाली है जो कि सौरव गांगुली की लाइफ पर बेस है, 14 मई 2027 को थिएटर में। और हाँ एक बात बताइएगा कि सौरव गांगुली के रोल के लिए राजकुमार राव कास्टिंग आपको सही लगती है या नहीं, DM करके बताइएगा इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा

0: ઇંગ્લિશ, એમએ મરાઠી, એમએ હિન્દી, એમએ ઉર્દુ, એમએ સંસ્કૃત, પીજી ડિપ્લોમા ઇન અરાબિક, ડિપ્લોમા પ્રોગ્રામ્સ, ક્રિએટિવ રાઇટિંગ ઇન ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, ફ્રેન્ચ, જર્મન, ઉર્દુ, જાપાનીઝ, પર્શિયન એન્ડ ટ્રાન્સલેશન.
1: લિમિટેડ સીટ્સ અવેલેબલ. વિઝિટ www.mgmu.ac.in ઓર કોલ કરે 9763679245 ઓર 9665353515. डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: पतविक्रेता बंधुभगिनींच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर शहर पतविक्रेता समिती सदस्य निवडणूक 2026
4: आणि मतदान दिनांक 25 जुलै सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सदरील निवडणुकीत केवळ नोंदणीकृत पतविक्रेत्यांनाच मतदान करता येईल.
3: नोंदणीकृत पतविक्रेते एकूण 6 पैकी कुठल्याही एका मतदान केंद्रावर मतदान करू शकता. मनपा शाळा बडकल गेट, मनपा शाळा किराडपुरा, मनपा शाळा सिडको N7, मनपा शाळा मुकुंदवाडी, प्रियदर्शनी मनपा शाळा, शहानूर मिया दर्गा आणि मनपा शाळा एकनाथ नगर उस्मानपुरा.
4: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका तर्फे जनहितार्थ प्रसारित.
5: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और आल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट को, छत्रपति संभाजी नगर.

0: गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। कांतारा का ये गाना मेल सिंगर ने गाया है या फीमेल सिंगर ने?
1: कर्म की ठोक ही जन्म का द्वार है।
0: सुनकर लगता है कि ये किसी फीमेल सिंगर की वॉइस होगी, लेकिन नहीं, ये एक मेल सिंगर की वेंकटेश डीसी। उनकी नेचुरल वॉइस हाई पीच है और उस पीच में गाना वो कंफर्टेबल समझते हैं, लेकिन इस गाने में थोड़ा चेंज है और साथ ही साथ उनकी टोन बहुत सॉफ्ट है और इस गाने में उन्होंने यूज की है हेड वॉइस और मिक्स वॉइस, इसी वजह से उनकी आवाज पतली, हल्की और फीमेल जैसी साउंड करती है। तो ये कन्फ्यूजन सिंगर के वजह से नहीं बल्कि सिंगर की यूनिक वोकल रेंज, सिंगिंग टेक्निक और म्यूजिक प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है।

E20 पेट्रोल के बारे में तो हम सभी ने सुना ही, और इसकी चर्चाएं आजकल बहुत जगहों पर शुरू है। आरजी अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM, और आप जो अपने गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, फिलहाल तो वो इथेनॉल वाला यानी कि E20 वाला ही पेट्रोल मिल रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ना तो दिन में तकरीबन एक गैरेज में 10 में से 4 ऐसे गाड़ियां आती है रिपेयरिंग के लिए जो कि E20 पेट्रोल की वजह से खराब हो रही है। और E20 पेट्रोल भाई आजकल की गाड़ियों में ना तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं हो रहा है, एंड इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है। ये अपने मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ एक रिपोर्ट में आई है, वही मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, वरना आप कहोगे कि यार ये अदनान दिल से कुछ भी कहता है। गाड़ियाँ बंद गिरना ये एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, एंड माइलेज गाड़ियों का एकदम कम हो जाना ये भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और आपने ना तो एक बात नोटिस की होगी, पेट्रोल पंप के ऊपर एक नोटिस लगाई होती है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जरी थोड्याशा पाण्याच्या संपर्कात आले तरी इथेनॉलच्या रासायनिक गुणधर्मामुळे सर्व इथेनॉलचे रूपांतर पाण्यामध्ये होते। म्हणजे सिंपल कसं आहे की अगर इथेनॉल वाला पेट्रोल थोड़ी भी पानी के कॉन्टैक्ट में आया तो पूरी तरीके से पानी बन जाता है पेट्रोल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गाड़ी की वॉशिंग करते वक्त थोड़ा भी पानी पेट्रोल टंकी में जाना नहीं चाहिए, वरना फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, वो पूरा के पूरा फ्यूल फिल्टर करना पड़ता है, यानी कि पूरा फ्यूल टैंक बाहर निकाल के उसको क्लीन करना पड़ता है। और ऐसा कुछ दिन पहले मेरे गाड़ी के साथ भी हुआ था, बेचारी टू व्हीलर चल रही थी बहुत अच्छे से, अंदर पेट्रोल मैंने डाल दिया और बरसात का थोड़ा सा पानी अंदर चला गया, तो देखा तो क्या वो पेट्रोल पूरा पानी बन चुका था। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि यार E20 पेट्रोल बेस्ट है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं आती है, ये सब कुछ फेक है, बट ग्राउंड जीरो पर रियलिटी कुछ और ही है। आम आदमी ना तो इस पेट्रोल की वजह से बहुत परेशान हो रहा है। बस इतना है कि आम आदमी पीसता है पीसने दो, चलता है चलने दो, बल्कि बस चलता ही आ रहा है। खैर, स्टे ट्यून्ड।

स्टिंग लवर्स इन द हाउस, कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टिंग के शौकीन है। और स्टिंग का मार्केट इतना है भाई कि जब नया नया लॉन्च हुआ था ना, तो हर किसी के हाथ में स्टिंग ही नजर आ रहा था। और स्टिंग के अंदर कैफीन बहुत भर भर कर होता है, इस वजह से लोग उसको ज्यादा पी रहे थे और बाकी कोल्ड ड्रिंक का भी मार्केट डाउन हो गया था। लेकिन जितना कैफीन ज्यादा उतनी हेल्थ हमारी खराब। और स्पेशली जो स्टिंग ड्रिंक है ना, बच्चों के अंदर बहुत पॉपुलर थी और फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट सामने आ गए, बच्चों की हेल्थ खराब होती हुई नजर आ रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक फैसला लिया है कि स्कूल के आसपास 500 मीटर तक अगर कोई दुकानदार स्टिंग बेचता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और उसकी दुकान सील हो सकती है, बिकॉज इससे बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके घर पर कोई बच्चा होता है 5-6 साल का, या तो 5 से 15 साल तक के बच्चे की उम्र होती है, और वो स्टिंग मांगता है और हम उसे स्टिंग लाकर भी देते हैं और कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छे से पीता है, इसको बहुत पसंद है। जिस तरीके से आप उसको पिला रहे हो ना, उसी तरीके से आप भी अपने बच्चों की हेल्थ खराब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें अपने पेरेंट्स की भी गलती है जो कि उनके बच्चों कैसे कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करती है, पिलाती है। और स्टिंग का ब्लैक मार्केट भी चल रहा है, बहुत सारे जगह पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि दुकानदार बच्चों के हाथ में स्टिंग देते और कहते हैं कि यहाँ पर मत पीना, फिर दूर जाकर पीना। कोई एकदम चुपके से 10 वाली 20 वाली स्टिंग 25 को देता है और उसका ब्लैक मार्केट करता है। तो अब इन सभी पर कार्रवाई हो सकती है। और अब FDA ने खुद कहा है कि अगर स्कूल के एरिया में कोई दुकानदार स्टिंग बेचता होगा तो उस पर कार्रवाई होगी कि दुकान सील कर दी जाएगी। तो प्लीज बच्चा कंपनी हो या बड़े लोग भी हो, स्टिंग अवॉइड ही कीजिए। स्टिंग क्या, जिस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन बहुत ज्यादा होता है वो सभी कोल्ड ड्रिंक हानिकारक होते हैं, क्योंकि एक 20 रुपए वाली स्टिंग के चक्कर में कब आपका 20,000 का बिल फट जाए अस्पताल का पता ही नहीं चलता। तो बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

0: हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले है, ये बात तो सच है यार। खैर क्या ही रखा है गोरेपन में और कालेपन में। You are listening MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और कभी कभी आपने भी ना तो किसी क्रीम की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वो कहते हैं कि सिर्फ 7 दिन में गोरा निखार, इंस्टेंट ग्लो, फेयरनेस गारंटेड। और शायद एक पल के लिए सच भी होगा ऐसा। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ऐसा हम भी मान लेते हैं। नो व्हाट क्या है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन लोग उसी चमकती चीज को सोना समझते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला है कि मार्केट में मिलने वाली कुछ फेयरनेस क्रीम है जिसमें मर्क्यूरी यानी कि पारा जिसे कहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है और वो उन ब्यूटी क्रीम के अंदर डाला जाता है। ये सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं बल्कि किडनी और पूरे अपने हेल्थ को भी खराब कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। सोचिए सिर्फ कुछ दिनों की फेयरनेस के लिए अगर हम अपनी सेहत को रिस्क में डाल दें तो ये सही बात है या गलत बात है? हम अक्सर इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, इस पर जो इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनको देखकर ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, लेकिन कैमरा फिल्टर और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो याद रखिए, हेल्दी स्किन इज मोर ब्यूटीफुल देन फेयर स्किन। वैसे क्या है ना, असली खूबसूरती आपके रंग में नहीं, आपकी मुस्कान, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेहत में होती है। जिस तरीके से अभी आप मुस्कुरा रहे हो ना, आए हाय क्या बात है, कितने खूबसूरत आप नजर आ रहे हो। बेसिक सी चीज नोटिस कीजिए, अगर आपने मुस्कान के साथ आपकी फोटो क्लिक करी ना, आपकी खूबसूरती अपने आप बढ़ती है। और ये काले गोरे में क्या रखा है भाई, तो इसलिए प्लीज ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट मत यूज कीजिएगा। और हाँ, जमाना तो हमें जज करता ही है, करने दीजिए, जमाने का काम ही है। बट वो गाना हमेशा याद रखिए,
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: कलर चाहे कुछ भी हो, अपना काम बताता है, अपनी जुबान बताती है तुम कितने खूबसूरत हो और अपनी स्माइल बताती है तुम कितने हसीन हो। समझे? स्टे ट्यून्ड।
2: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या,
1: हमें काले हैं।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University in 62 Chhatrapati Sambhaji Nagar. पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या तक खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक. आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी. MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6. कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130. MGM पेट केअर.
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
0: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
0: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन. फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस N6 सिडको छत्रपती संभाजीनगर.

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तू भी सुनो पापे,

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

ये नहीं पहने। सिनेमा दाऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।